रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दी
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे सूर।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

शफक कहते हैं किरणों को, रेस और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

बाद से आफ्टरनून बादल जो है सूरज को ढकने की कोशिश करेंगे और वही सूरज की इंटेंसिटी तब भी कम नहीं होगी। 34 डिग्री सेल्सियस फॉर टुडे। रीजन 91.4 एफएम वेदर अपडेट बता दूं आपको कि मॉडरेट जी 99 रहने वाला है। अभी यूवी इंडेक्स जो है दैट्स ऑन वीक। ह्यूमिडिटी 65%, विंड स्पीड 2 किलोमीटर, विजिबिलिटी 9 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 5:33 पर, आज का सनसेट हो गया 7:43 पर। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन सरे हक दरकाते रहा।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
4: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा।

दोस्तों वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो वायरल होता है हम आप तक पहुंचाते हैं। जी हां, ऑस्ट्रेलिया में हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किए गए थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स ऑफ कैरट्स एंड स्वीट पोटैटोज फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, क्योंकि वो इफेक्ट हुए थे बुश फायर से। अब ऐसा है कि इंसान जब जानवरों का ख्याल रखने लगते हैं तो मदर नेचर ऑब्वियसली उन्हें भी प्रोटेक्ट करने ही लगती है। आखिरकार इंसान और जानवर मिलकर इस इकोसिस्टम को बैलेंस जो करते हैं। यहाँ अगर हम पृथ्वी की नजर से देखें, वी आर पार्टनर्स टू ईच अदर। डू यू वांट अ पार्टनर टू? अगर आपको भी एक पार्टनर चाहिए तो 8899-04904 इज द नंबर, नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM। मैं हूं जागजीत सिरे, तरकाते रहो।

0: to Zeus.
1: कौन आया?
2: Zeus.
3: Radio Chana 90.4 FM, the hardest frequency. यार दिल की धड़कन आप सुन रहे हैं मजदार शो वासब. मजदार शो वासब और वासब शो में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का अपडेट. जी हाँ, आपको बताते चले कि 3 लाख से ज्यादा डिवोटी जो है कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पावन यात्रा पहले ही 2 हफ्तों में. यात्रियों का एक और जत्था आज सक्सेसफुली डिपार्चर कर चुका है जम्मू बेस कैंप से, जो कि बालतल और पहलगाम का रूट पकड़ चुके हैं. आज शामिल हुए यात्रियों की तादाद जो कि इस पावन यात्रा पर निकल चुके हैं 4,640. साथ ही आपको बताते चले आज अमरनाथ यात्रा का वेदर अपडेट है. 17 डिग्री मैक्सिमम और 12 डिग्री मिनिमम का टेम्परेचर रहेगा. वैसे तो वेदर क्लियर रहने वाला है, लेकिन दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में देयर आर चांसेस कि बारिशें बरस सकती है. बारिशों के जो चांसेस है वो 20 से लेकर 40% है. हर दिल की धड़कन रेडियो चना 90.4 FM, आपकी यात्रा सफल रहे.

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में आज का कोट ऑफ द डे।
5: गामा थीटा।
4: आज का कोट कहता है, व्हेन लाइफ इज स्वीट से थैंक यू एंड सेलिब्रेट, व्हेन लाइफ इज बिटर से थैंक यू एंड ग्रो।
5: ये गाना उनके लिए है जो मेरे साथ स्कूल।
4: मैं हूँ जॉक्सिस, मेरी जान से हक्ट, दरगाह तेरा।

0: रफ्तार। सुबह को उठ के स्कूल जाता बस में गाने का।
1: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चना 90.4 FM।

0: Kom her, ja.
1: मस्तार शो वॉसअप मस्तार को मस्तार बनाता है आपका प्यार और मेरे यार रेडियो चिनार, तभी तो है सही क्योंकि आप सुनते हैं इसे, बताओ है कि नहीं। और इस फ्रीक्वेंसी पर मैं हूँ जॉक्सिस, आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो वॉसअप ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन। भैया धड़कनों को धड़काने के लिए और जोर से हमारे साथ जुड़े हैं साहिल, लिखते हैं साहिल के सर स्टूडेंट हूँ और रेडियो चैनल सुनता हूँ, फॉलो करता हूँ और मजा आता है। थैंक यू सो मच आपका मेरे भाई साहिल हमसे जुड़ने के लिए, गॉड ब्लेस यू। आप भी जुड़ सकते हैं 8899-0494, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। और वो सब शाम में आज का टॉपिक यूनिवर्स, जी हाँ इस कायनात की बात होगी, यूनिवर्स रिलेटेड फैक्ट्स आप तक पहुंचाएंगे। तो भैया आप भी अगर कुछ पहुंचाना चाहते हैं हम तक तो डीएम भी कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पर मिलूंगा ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से। लाल रेडियो चिनार और इसकी अदाएं जो आपको बनाती हैं दीवाना, तभी तो दीवाने दिलों की धड़कन है रेडियो चिनार और इस धड़कन को धड़काते हैं आप। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार, सड़े हट धड़काते रहो।

0: to Zeus. कौन आया?
1: Zeus.
2: दिल की धड़कन को आप और हम मिलकर धड़का रहे हैं। आप सुन रहे हैं मजेदार शो, व्हाट्सअप में हूँ आपका साथी और जेजियस। व्हाट्सअप शो और व्हाट्सअप शो में आज बात हो रही है यूनिवर्स की, और यूनिवर्स से रिलेटेड फैक्ट्स हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन बता दूं आपको, हमारे साथ जुड़े हैं आरिफ। आरिफ लिखते हैं, सर इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ रेडियो चुनार फैमिली, क्योंकि रेडियो चुनार पर म्यूजिक के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हंसते खेलते हमें पढ़ा रहा है। अब दोस्त देखिए, खाली गाने ही नहीं बल्कि दुनिया भर का ज्ञान रेडियो चुनार पर आपको सुनने को मिलेगा। सिर्फ व्हाट्सअप शो में नहीं, चाहे चुनार बीट्स, हंगामा या एनी अदर शो, दिल की बात साहिल के साथ या रेडियो गर्ल्स, वेस्टर्न म्यूजिकल शो, आई फील गुड, एनी बीट, एनीथिंग, हर एक शो में हम कोशिश करते हैं कि इंटरेक्शन इस तरह से हो कि हंसते खेलते थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन अपडेट भी होता रहे। सो थैंक यू सो मच आरिफ हमसे जुड़ने के लिए। एंड टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स, दोस्तों जानने की जरूरत है कि जब भी हम यूनिवर्स की बात करते हैं, तो अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि जितना रेत के दाने दुनिया के सभी बीच पर है, उससे ज्यादा स्टार्स यूनिवर्सेस में है, और ये जो काउंट है दिस गोज अप टू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। और वही आपने ब्लैक होल्स के बारे में तो सुना होगा, ब्लैक होल तब बनता है जब स्टार्स एक्सप्लोड होते हैं और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम इट। और हम इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि सबसे नजदीकी ब्लैक होल जो अर्थ के है, दैट इज 10,000 लाइट ईयर्स अवे। आपने अक्सर देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस सूट पहनते हैं, बड़े भारी भरकम, और उन्हें पहनने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि उन सूट्स को वार्म, कूल, प्रेशराइज और सप्लाइड बनाना होता है फॉर द फ्रेश एयर। तभी उन सूट्स को निकालने और लगाने में 6 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। अब देखने में जो ये जो कायनात है सिंपल सी लगती है, लेकिन सही मायनों में इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। और भी बातें होंगी रिलेटेड टू यूनिवर्स, आप बने रहें, सुनते रहें, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें। अपनी बात हम तक पहुंचाएं, हमें बताएं क्या है आपके दिल में वाणी जो आप चाहते हैं पूरी दुनिया को सुनाने। 8899904904 नंबर। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज, डीएम करे, इंस्टाग्राम पर मिलूंगा ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से। मैं हूं चौक ज्यूस, रेडियो चैनल पर सिर्फ धड़का।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: to Zeus.
1: कौन आया?
2: Bollywood News.
3: दोस्तों रेडियो चलाना 90.4 एफएम मजदार शो व्हाट्सएप शो का सेगमेंट बॉलीवुड न्यूज। बॉलीवुड न्यूज में आइए बात करते हैं चर्चा प्रियंका चोपड़ा की। जी हां, प्रियंका चोपड़ा जिनकी अदाकारी नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी लोग जानते हैं। वैसे आज प्रियंका का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो बर्थडे तो भाई का भी है, बस आप विश करना भूल गए। तो प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर टीम प्रियंका ने रिलीज किया है वाराणसी मूवी का पोस्टर। स्टंट्स एंड मंदाकिनी फियर्स न्यू लुक और एसएस राजामौली की ग्लोब ट्रॉटिंग एपिक मूवी। जी हाँ, और ये जो लुक है फैंस को दे रहा है टफ एंड हॉट टाइम। और इस फ्रीक्वेंसी पर मैं हूँ जॉक्स और भी बॉलीवुड के नहीं। Stay hooked.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-800-180-7178 1-800-180-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Zeus.
1: Kom nou ja.
2: Tech Talks with RJ Zeus.
3: जी हां, रेडियो चैनल की हर फ्रीक्वेंसी पर Tech Talks, एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम पहुंचाते हैं आप तक टेक अपडेट्स.
4: Tech Talks.
3: भैया चाइना की अगर हम बात करें तो रेसलर चाइना नहीं बल्कि कंट्री चाइना, और वही अगर हम चाइना के बारे में बताएं तो फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप चाइना ने सक्सेसफुली जो है कारगर तरीके से जो है होस्ट की है. अब इस रोबोटिक ह्यूमनॉइड एमएमए चैंपियनशिप में हुआ क्या, दो रोबोट ऐसे लड़े जैसे एमएमए फाइटर्स आपस में लड़ते हैं, मतलब वैसे मुकाबला होता था हड्डी का शौर्य से, खून का जोश से, लेकिन आज एमोइल और स्टील आपस में टकराया.

देखने वाली बात यह है कि क्या इन रोबोट्स के चलते कहीं रियल स्टील मूवी सच में तो हकीकत नहीं बन रही है, एंड मोर ओवर एनीथिंग, क्या लोग इस सब को देखना पसंद करेंगे, या कुछ लोग जो वायलेंस से नफरत करते हैं क्या इन फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक फाइट्स को लाइक विल दे सपोर्ट इट और नॉट। बस ये है कि रोबोट से ऐसे फाइट करवाना और उन्हें इस तरह से प्रॉम्प्ट और कमांड करना, भैया ये तो पहली बार हुआ है। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार, बातचीत जारी है मेरे यार सिडे हक्ट जगजीत के साथ, धड़काते रहो।

0: Jorge Zeus.
1: Kom nou ja.
2: Dostoj, si që kjo sada është gëli, që asët lene që hunga dhe së gjatë, si signing of a the day, it's a weekend, so enjoy your Saturday, Zen, Zen is with full swing, mosëm, mosëm hai, bahar gumi, family, kubi guma ye, aur khud bhi nazare dekh kar aaiye. Lekin Radio Chinar ka saath aapne nibana hai, kyunki yahan par hota hai, infotainment and entertainment, guarantee. अब इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का डोज यानी इंफोटेनमेंट का डोज मिलता रहेगा आपको एवरी रोज. जा रहा हूं मैं, लेकिन आ रही है आरजे दीवा, आरजे दीवा लेकर शो चिनार बीट्स, बीट्स ऑन रिपीट अब एंजॉय करने वाले हैं. दिस इज बार बस साइनिंग अप फॉर द डे. बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मासलामा.

0: मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम।
1: ना इंसान की फितरत ने ना खुदा की खुदाई ने मुझे शायर बनाया है, बस एक उसकी जुदाई है।

Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: देखिए यार, शनिवार नहीं हो सकती अब, शनिवार पे तो है प्यार का ये वार, चुनार बीट्स का है टकरा जी। आज शो चुनार बीट स्टार्ट तो हो चुका है 12 बजे। ढेर सारी बातें, मस्ती मजाक, फन, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। तो सुपर एक्साइटेड हमेशा की तरह आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए, और क्या कुछ होगा बताऊंगी आपको। बस आपने क्या करना है, अपने शनिवार की बातें मेरे साथ जी हाँ शेयर करनी है, और शो का ऐसा बनना बताना क्या प्लान्स है आज और क्या है मूड एंड वाइब।
1: घड़ी के कांटे मुट्ठी में
0: हो, हाँ घड़ी के कांटे तो कहीं ना कहीं अब चुभने ही लगे हैं एम्प्लॉयज को, क्योंकि कल जो प्लान बना के बैठे
1: हैं।
0: अब वॉल्यूम भी तो आपका ये स्टेशन ख्याल रखते हैं ना कि आपकी पसंद का। सो बैक टू बैक सॉन्ग्स विदाउट एनी एडिटरी म्यूजिक का वादा देता है रेडियो चुनार भरपूर, और सबसे ज्यादा आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर, रेडियो चुनार 90.4 FM।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM।

beats on repeat, show Junaan beats up, enjoy kar rahe only on radio Junaan 90.4 FM. Dei sari baatein ho rahi hai and we are talking about national highway Jammu and Kashmir. नेशनल हाईवे की बात करें बहुत सारे से ट्रैफिक अलो किया जा रहा है, आप आराम से आ सकते जा सकते अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते, बट बी केयरफुल क्योंकि जो गाइडलाइंस दी गए हैं ड्यू टू संजय यानी कि श्री अमरनाथ जी यात्रा जो अभी चल रही है, 3 जुलाई से यात्रा शुरू हुई और अभी भी जारी है, 57 डेज की ये यात्रा होती है एंड अभी आपको बता दें कि ये अब भी चल रही है और आगे मंथ में भी चलेगी. सो ड्यू टू दैट हमारे लिए डिफरेंट गाइडलाइंस हैं नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, स्पेशली जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं उन्हें सुबह से शाम के 7:30 तक लो किया जाएगा और जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उन्हें सुबह से लेकर शाम के 11:30 तक ही लो किया जाएगा. तो ज़रूरी है अगर हम भी जा रहे हैं इस रूट से हमने ट्रैवल करना है तो अपना हिसाब किताब यानी कि जो हमारा हिसाब होता है उसका हमने ख्याल रखना है एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट हिसाब किताब यानी कि हमने पता होना चाहिए कि कौन सा रूट है, क्या गाइडलाइंस है, कहीं हम कहीं पे फंसेंगे तो नहीं. सो ये सारी जानकारी हमें मिली है ट्रैफिक पुलिस से और हमने एडवाइजरी देखनी पड़ेगी उसके मुताबिक ही हम अपना प्लान बना सकते हैं. साथ ही गलत जगह पे ओवरटेक करना बिल्कुल गलत है, सीट बेल्ट लगाइए, अपना ख्याल रखिए. देखिए हम कितना भी बोल सकते आप नहीं ठानेंगे ना कि हम अपना ख्याल खुद रखेंगे, कोई नहीं आएगा आपको बोलने के लिए. सो बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हीरो बनिए लाइफ में और जीरो वाले काम करना छोड़ दीजिए. देखिए चांस ना मिस कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि लोग आपके फैन बन जाए कि नहीं जी इन्होंने तो सही काम किया है. सो ज़रूरी है कि उसके लिए हमने सही चीज़ें करनी भी पड़ती है. आप मुझे बताइए क्या है आपका एक्सपीरियंस, 8899049044 कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो चनार वीस कैसा बन जाए.

शो चुनाव ये सारी बात है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न डे फ्रेंडशिप। देखिए यूँ तो आप और हम दोस्त है, हमारी दोस्ती थोड़ी नई है तो पुरानी है, क्योंकि मुझे तो मज़ा नहीं आता आपके वगैरह एंड आई फील कम्प्लीटेड जब आप मेरे साथ बात करते हैं। मैं अकेली नहीं होती, मेरी पूरी वाइब और ट्राइब मेरे साथ होती है और आज भी आप मेरे साथ, हम साथ साथ यूँ ये साथ हमारा बना रहे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न डे फ्रेंडशिप्स। को क्या है मॉडर्न डे फ्रेंडशिप्स? आई बिलीव कि तब भी दोस्तियों की अहमियत होती थी बहुत ज़्यादा, तब तो ज़्यादा होती थी, अब भी दोस्तियों की अहमियत यानी कि जेन ज़ीज़ बदल रहे हैं रुख दोस्ती का, क्योंकि दे बिलीव कि दोस्त दोस्त होता है और अगर मेरे दोस्त की गलती है तो गलती किसी और की, यानी कि गलती की गलती है बट मेरे दोस्त की गलती नहीं। सो आई बिलीव कि आज की फ्रेंडशिप्स भी बहुत सही है, तब की फ्रेंडशिप्स भी बहुत ज़्यादा सही थी। अब आप मुझे बोलिए कि पहले ज़माने की दोस्तियाँ अच्छी हुआ करती थी या फिर आज, मुझे बताए। शो कैसा बन जाए 88999।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Beats on repeat, show chunar beats up, enjoy kar rahe. Ye sari baatein ho rahi hain. We are talking about modern day friendships, jo kahin na kahin badal chuki hai. But I must say ki Gen Z's mein abhi wo cheez ho gayi na ki yani ye friendship ka matlab hi change kar rahi hai. Bhai sahab ki hum kehte the ki फ्रेंडशिप की वैल्यू नहीं रही है. इवन 90s में हम कहते ओ बड़ा आसान दोस्ती ओह ओह सोस अलग ही सोस अलग ही लेवल आसा फ्रेंडशिप. बट आई विल टेल यू जो अभी के जेंजीज है उन्होंने वो सारी चीज़ें चेंज की है. वो एक्चुअली दे मीन इट कि अगर हमारा कोई दोस्त है हम उसके लिए लड़ेंगे. एंड अगर सच में दोस्त है तो ये नहीं है कि अगर उसकी गलती है उसको समझाएंगे अलग से, बट सामने उसके लिए खड़ा हो जाएंगे और लड़ेंगे. ऐसा नहीं कि वो मानते हैं कि दोस्त की गलती नहीं होती है. एंड आई लव दैट कि कैसे आज के बच्चे उस दोस्ती की मीनिंग को कैसे अलग वे में लेके जा रहे हैं. एंड कितना ज़्यादा प्योर इंटेंशंस होता है आज के बच्चों में कि अगर कोई दोस्त है वो सच में दोस्त है और सच में वो मानते हैं कि मॉडर्न डे फ्रेंडशिप को उन्हें काफ़ी सीरियसली लिया है कि जो अंडर एस्टिमेट करते थे कि शायद आज के बच्चों में वो वैल्यू नहीं है फ्रेंडशिप्स की. बट सच में आज के बच्चों ने दिखा दिया है कि फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है. आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि पहले की फ्रेंडशिप ज़्यादा बेटर थी या मॉडर्न फ्रेंडशिप्स. मुझे बताएं शो कैसे बन जाए. आप सुन रहे हैं हॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चैनल 90.4 FM.

मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी

0: कितनी खूबसूरत है और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। Let's do it together. Let us prove it together that we are responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Jeremy. Jar Beats with Harshi Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

Beats on repeat. Beats on repeat. Yo, Chunar Beats up. Enjoy your only on Radio Chunar 90.4 FM. And we are talking about modern day friendships, because modern day friendships ka ek acha impact. A lot of people are like, कुछ लोग फ्रेंडशिप्स को सीरियसली नहीं ले लेते हैं, और मे बी जो हम देख रहे हैं कि कभी कभार धगा मिलता है दोस्ती में, तो इंसान फिर दोस्ती पे यकीन नहीं कर पाता है, या बिकॉज ऑफ दैट इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता, या फिर इंसान बुरा ही बोलता है, कहाँ है मेरे सच्चे दोस्त. फिर सच में सच्चे दोस्त होते हैं. अगर आप दिल से चाहें तो आप एक सही फ्रेंडशिप पा सकते हैं. मॉडर्न फ्रेंडशिप्स भी एक एग्जाम्पल है कि हम दोस्त बना सकते हैं, अगर सीए कि हमारे इंटेंशंस क्या है. लाल, मेरे इंटेंशन साफ है कि यहाँ पर सूचना और बीस को टारा बाय बाय करना है, और शो म्यूजिक ऑन हमारी एंट्री होने वाली है बराबर 8 बजे, और 2 तक आप अपनी पसंदीदा ट्रैक सुनेंगे. मैं बता देती हूँ कि आपका हमारा साथ कैसा है और कैसा बना रहेगा इस 1:30 से लेकर 2 बजे तक. इट्स 8899049904 यू नंबर है जो कि हमें जोड़ के रखता है. एंड टेक्स व्हाट्सएप करके आप शो में शामिल हो सकते हैं, अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं. फिर से बता रही हूँ, इट्स 8899049904. आप टेक्स व्हाट्सएप करके शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन सकते हैं.

ओके तुम आ रही हो, मैं जा रहा हूं। लगता है रूम में रह गया।

शो म्यूजिक ऑन डिमांड आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चला 90.4 FM। और यहाँ पर आप एक रिक्वेस्ट आई है, इस ट्रैक के लिए आप भी अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं 8899904904 पर आप टेक्स्ट व्हाट्सएप करके अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं। शो म्यूजिक ऑन डिमांड आप सुन रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चला 90.4 FM।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चिनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी

0: रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: कोक स्टूडियो भारत, सब्सक्राइब नाउ।
2: आदिनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मस्तन सुनो।

खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते। अरे शो म्यूजिक ऑन डिमांड आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM। और इकरा की रिक्वेस्ट आई है इस ट्रैक के लिए गुड माई ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM। और आप भी अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं, उसके लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपने 8899-04904 पर आपने कॉल करनी है, टेक्स्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं आप और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन सकते हैं। बस थोड़ा सा वक्त बचा है और जल्दी से जुड़ जाइए शो का हिस्सा बनने के लिए। फिर से बता रही हूँ 8899-04904 टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चिनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: खामोशियां जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
2: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
1: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
2: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
1: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
2: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
1: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: शो रेडियो गर्ल्स अब एंजॉय कर रहे हैं ऑन योर रेडियो चुनाव 90.4 एफएम. डे सारी बातें हो रही हैं एंड आज हम शो पर बात कर रहे हैं. असरा, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आप?
1: आज हम बात कर रहे हैं वुमेन इन गेमिंग इंडस्ट्री, और स्पेशली अगर हम इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे, इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड फील्ड. बट अभी की बात करें तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन वहां भी है, थोड़ी सी कम है बट है जरूर.
0: बिल्कुल. और ऐसे मुझे एक नाम याद आ रहा है अभी, वो अलायंस में धूम मचा रही है, पायल एंड शील्ड्स. ओह माय गॉड. क्योंकि अक्सर हम बोलते हैं कि यार लड़की गेमिंग में क्या करेगी,
1: ये टेक फील्ड में क्या करेगी.
0: बिल्कुल. एंड अभी वो आई गेस शी इज थर्ड एंड फोर्थ नंबर का उनका शायद

0: रैंक है दैट टू यूट्यूबर्स में उन्हें माना जाता
1: exactly,
0: है मोस्ट फेमस यूट्यूबर्स दैट इज समथिंग. मतलब आप सोचो कि एक लड़की गेम खेल रही है, आई मीन आप खेल
1: एक करियर बना रही है
0: और उसके बाद उसका करियर उसी में आप अपना करियर बना रहे हो, आप उससे कमा रहे हो, उससे वंडरफुल फीलिंग क्या होगी,
1: क्या हो सकते हैं. बिल्कुल. और बहुत सारे ऐसे गेमर्स हैं जैसे ट्रिगर्ड इंसान है या कैरी मिनाटी,
0: बिल्कुल
1: दे डू गेमिंग ऑल्सो, मिथ पैट है, बहुत सारे हैं. बट ये जो फीमेल गेमर्स है ना उनके बारे में लोग थोड़ा कम जानते हैं, बट दे आर डूइंग फैबुलस, दे आर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स, वो अपना इनकम जेनरेट कर रहे हैं, एंड दैट्स
0: वंडरफुल. आप देख लीजिए कि लड़कियां कुछ ऐसे फील्ड्स में जाना जहां पर हम तो पसंद करते हैं कि बहुत सारे जैसे अपने कैरे मिलाटी का नाम लिया, या फिर अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक वो नहीं बना था कि नहीं ये तो लड़कों के लिए है, लड़कियां क्या कर सकती
1: क्या इसमें? करेंगे इसमें.
0: पर अभी का अगर हम देखें तो एक चेंज आ चुका और एक विमेन ही है जिसने इसमें चेंज लाया है, उन्होंने पहल किया और बहुत सारे लोगों के लिए रास्ता खोला है. बहुत सारी लड़कियां अभी है कि हमें भी गेमर बनना है, हमने भी गेमिंग इंडस्ट्री में खुद को हम देखते हैं. सो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा रास्ता है नहीं जहां लड़कियां नहीं है. हर एक फील्ड में अगर आप देखें कहीं ना कहीं कोने में तो आपको दिखी जाएगी. हम यहाँ पे अधिक
1: अपनी रिप्रेजेंटेशन है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन अभी हर फील्ड में. और देखिए शो रेडियो गर्ल्स पे हम हमेशा वुमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं जो स्ट्रगल्स होते हैं या कुछ अचीवमेंट्स होती हैं. एंड देखिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी जरूरी है. 8899049904 इज नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, और आप बताइए आपका क्या विचार है.
0: बिल्कुल. सो विचारों से असरा का कहना है ना प्यार बढ़ता है, तो हमारा प्यार भी आपके साथ बढ़ चुका है और अकेले हम फील तो कर ही नहीं रहे क्योंकि हमें लगता है आप हैं, हम हैं, मौका है, दस्तूर है, कहाँ जाना है हुजूर. तो जल्दी से शो का हिस्सा बन जाइए, आप और हम मिलके एंजॉय कर रहे हैं शो रेडियो गर्ल्स. तो जल्दी से शो का हिस्सा बन जाइए, रुकिए नहीं, बस शुरुआत हो चुकी है.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए।

देखिए, ख्याल तो मुझे बहुत ज़्यादा है और मुझे इस चीज़ का भी ख्याल है कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं, एंड खासकर मुझे इस चीज़ का भी ख्याल है कि मैं और असरा आपके साथ रेडियो गर्ल्स पर जब बहुत सारी बातें करते हैं तो फिर हंगामा तो रह जाता है ना, तो ड्रामा कौन करेगा? ऑब्वियसली असरा करेगी। तो मैं जा रही हूँ यहाँ पे शो रेडियो गर्ल्स को टाटा बाय बाय करने। अब देखिए, असरा से रहा नहीं जा रहा, एंड शी इज़ लाइक कि जल्दी करो दीपा, आप चले जाओ, अदरवाइज मैं नहीं मानूंगी। अब मैंने भी ठा लिया, ये देखिए सैटरडे है और इनको ज़्यादा तंग नहीं करते ऑलरेडी। वो कहते हैं ना कि एम्प्लॉय की खुशी सातवें आसमान पे होती है, असरा तो खुशी से आए हाय बल्ले बल्ले कर रही है। सो इट्स लाइक हम हमेशा लाइफ में चाहते हैं कि हम खुश रहे, और मैं ये चाहती हूँ मेरी पूरी वाइब और ड्राइव हमेशा खुश रहे, एंड स्पेशली संडे, तो इन्जॉय कीजिए। मैं जा रही हूँ, असरा आपके साथ है, तो टाटा बाय बाय। चिनार बीट्स, म्यूजिक ऑन डिमांड, शो रेडियो गर्ल्स। अब मिलेंगे मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।

Radio Chinar. Radio Chinar. Three songs.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि हम आपके पास नहीं है, क्योंकि आस पास साथ साथ हैं हम सब और चार तक तो हमारा साथ बना रहता है। शो शुरू हो चुका है, हंगामा जहाँ होता है ड्रामा, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, क्या बजिंग है और साथ में लाइफ का ऐसा फिलोसफिकल टच जो कहीं और नहीं मिलता, और आते आते ही प्ले होता है कुछ खास, कुछ क्रेजी।

मेरा भी यही विचार है, क्योंकि इन्होंने कहा है कॉमन विचार होने का तो होने का, भाई ने बोला करने का तो करने का बॉस। बट देखिए सेंस भी बनाता है इस बात का कि सैटरडे अगर चार अंक तक क्या मजा आ जाएगा। बट देखिए उनके ज्यादा मजा है जो एक्चुअली सैटरडे भी जिनका ऑफ होता है। ओ माय गॉड, हाउ डज इट फील लाइक टू बी द गॉड्स फेवरेट। बट जो सैटरडे नाइट की खुशी होती है वो अलग होती है, क्योंकि कल संडे है और संडे इज द फन डे। मैं हूँ अश्रा सुंदर, रेडियो सुना 90.4 FM, और सैटरडे की खुशी में शो शुरू हुआ है और बहुत सी चीज़ों के बारे में बात होगी। क्या ट्रेंडिंग है, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा फैक्ट, और इसके अलावा हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में, आज का क्या टॉपिक है, एंड सो मच मोर टू इट। मैं हूँ अश्रा सुंदर, रेडियो सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। जी हाँ, हंगामा है, ड्रामा है, पर इन्फॉर्मेशन और क्या ट्रेंडिंग है उसके बारे में भी बात होती है। और शो शुरू करते ही हम फ्रेश बात करते हैं कि आज की जो मंडी है, ताज़ा ताज़ा सब्जी मंडी नहीं बट कि डिजिटल मंडी में क्या रखा है हमारे लिए आज, क्या लोग देखना पसंद कर रहे हैं, कौन सी ऐसी रील है जो लोग देख रहे हैं, रिपोस्ट कर रहे हैं, या कुछ ऐसा क्रेजी सा जो लोगों को पता चला है एंड दे आर ट्राइंग टू शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। और आज की बात है सुनिधि चौहान, वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स ऑफ बॉलीवुड। आई लव हर, शी इज गॉर्जियस, हर वॉइस, द परफॉर्मेंस शी गिव्स इवन एट दिस एज। बट एज की बात हुई है तो एट द एज ऑफ 16 शी हैज रिकॉर्डेड अ वंडरफुल ट्रैक जो अपने टाइम का सुपर हिट हुआ था फ्रॉम द मूवी फिजा, जिसमें कास्टेड ऋतिक रोशन, सुष्मिता सेन, करिश्मा कपूर है एंड सुनिधि ने ये गाना बहुत ही खूबसूरती से गाया है। बिल्कुल, इन्होंने हमारे दिल की बात बोल दी है कि मस्त माहौल में जीना इज द वीकेंड वाइब्स। एंड आज का तो यही हमारा थीम है, हमारा तो वैसे भी यही थीम होता है कि मस्त होके जियो और खाओ पियो, ऐश करो मित्रों, और क्या रखा है जिंदगी में। मसरा सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 एफएम। एंड दिस ट्रैक इज सांग बाय सुनिधि चौहान, आई रिपीट, एट द एज ऑफ 16, एट द मैरिज ऑफ 16, एंड शी सांग इट सो वेल कि अभी भी ये फेमस है, मोर देन 30 मिलियन प्लस views on YouTube collectively, and what a crazy voice. मैं हूँ आस्ट्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार। कुछ ही ट्रैक के बाद हम बात करेंगे रेलवे अपडेट्स के बारे में, सो स्टे ट्यून्ड टू द हॉट फ्रीक्वेंसी।

0: Welcome back to Show Hangama, only on Radio Sunar 90.4 FM.
1: ट्रक्का वाला गीत हो, पर अपडेट तो रेलवे वाली है. और आज की अपडेट यही है कि हर कोई ट्रेन इज शेड्यूल्ड बाय समर टाइम टेबल, और जो भी रेगुलर डेली शेड्यूल्स हैं वो फॉलो होंगे विदाउट एनी मेजर डिस्ट्रप्शंस. बट एक और चीज़ है जो बहुत अच्छी है फॉर द फार्मर्स, फूड फ्रूट ग्रोअर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, दैट इज पामपुर स्टेशन पर जो नईली

0: इनॉग्रेटेड ट्रेन्स हैं जो स्पेशली फॉर द गुड शेड्स हैं, जो जो सेब है अभी जो बागान में से सेब निकल रहे हैं या फ्रूट्स निकल रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो भी इंट्रोड्यूस की गई है, री इंट्रोड्यूस की गई है. और जो अनंतनाग हब का स्पेशली जो प्रेशर रहता है वहाँ का, जो वहाँ का फ्रूट रहता है उसका थोड़ा वो रोड क्लियर रहे ताकि ट्रैफिक ज़्यादा ना हो, लोग कुछ फार्मर्स को एक ये मिल जाती है, एक सहूलियत मिल जाती है कि वो ट्रेन का इस्तेमाल करें. सो दैट इज़ ऑल्सो द न्यू अपडेट. बाकी जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो तो चलती रहेंगी, और जो भी ट्रेन्स हैं वो मॉर्निंग में थोड़ा सा डिले हो सकती थी और वो हुई भी, बट अभी के जो आफ्टरनून वाली है दैट विल बी ऑन टाइम. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 एफएम, क्योंकि कुछ ही ट्रैक्स के बाद बात होगी आज के टॉपिक के बारे में. और आज बस एक हिंट, छोटू सा हिंट ये है कि आज का टॉपिक कुछ क्यूट सा है. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन. और मैं बस यूं गई और यूं वापस आई, सच में.
1: ट्रक का बड़ा गीत है जी.

0: वो तो मुझे नहीं पता कि फिलौरी बिना चटनी कैसे बनी, बट एक चीज का तो जरूर है कि वादा किया था मैंने वो मुझे मालूम है और वो मुझे याद है कि मैंने कहा था कि कुछ ट्रैक्स के बाद हम बात करेंगे कि आज का क्या टॉपिक है, और आज का टॉपिक कुछ प्यारा है. दैट इज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनिमल लवर्स, हाउ एनिमल्स आर सो गुड, एंड कैसे एनिमल्स से आप लॉयल्टी एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आप कभी कभी ह्यूमन से नहीं कर पाते हैं, और फिर हो जाता है लोचाए उल्फत.
1: चाय उल्फत हो गया.
0: और ऐसा लगता है कि इंसानों से ज़्यादा हमें जानवरों से प्यार होने लगता है, चाहे किसी के घर पे कोई पेट हो, बिल्ली हो या कोई डॉग हो या कोई भी, लाइक देर आर सो मेनी पेट्स दैट यू कैन हैव. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनिमल लवर्स एंड व्हाट इट मीन्स टू बी एन एनिमल लवर. सिर्फ एनिमल लवर वैसे नहीं होता कि आप किसी का ख्याल रख रहे हो, बल्कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ स्ट्रे एनिमल्स ऑल्सो, जो सड़क पे जानवर होते हैं उनका भी ख्याल रखना होता है. तो आज का ये टॉपिक है, बहुत प्यारा है, आई नो एंड आई डेफिनेटली नो दिस कि आप लोग भी कुछ ना कुछ सोचते होंगे और कुछ ना कुछ कहना चाहते होंगे. तो 8899-04904 इज द नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. शेयर कीजिए अपने विचार, विचारों से बढ़ता है प्यार, तभी तो हम हैं रेडियो चुनार, हर दिल की धड़कन. और हाँ, ये जरूर है कि मैं कुछ ट्रैक्स के बाद वापस आऊंगी. मैं बस यूं कही और यूं वापस आई.

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: डीजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार। और जैसा कि आज हम एनिमल लवर्स के बारे में बात करते हैं और कर रहे हैं, तो एनिमल लवर होता कौन है? बेसिकली एनिमल लवर्स वो लोग होते हैं जिनको किसी भी लिविंग क्रीचर, इट्स नॉट जस्ट अ कैट और डॉग और सम पेट एनिमल्स, इट्स रिलेटेड टू एवरी काइंड ऑफ एनिमल। दे फील अ डिफरेंट फीलिंग फॉर देम, दे फील एम्पथी फॉर देम। एक रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होता है, एक एम्पथेटिक बिहेवियर होता है कि उन्हें महसूस होता है कि अगर किसी को, किसी एनिमल को दर्द हो रहा है तो वो दे कैन फील इट। और रही बात मतलब क्या क्या कर सकता है एज अ एनिमल लवर्स, वॉट डू दे डू? दे रेस्क्यू द स्ट्रेज, जो सड़क पे या कोई जख्मी होता है या किसी मुश्किल में कोई एनिमल होता है तो उसकी हेल्प करते हैं। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए काम करते हैं, दैट इज एन एनिमल लवर टू। या ऐसा कुछ भी कि आपके घर पे अगर कोई पेट है तो आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप या एक इंसान एनिमल्स के लिए कुछ करता है, बल्कि एनिमल्स भी अनोइंगली और नोइंगली आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। स्पेशली अगर बात करें, एक कनेक्शन डेवलप होता है अगर आपने पेट्स के साथ सही में एक इमोशनल सपोर्ट, एक इमोशनल कनेक्शन शेयर करते हैं तो एक इमोशनल सपोर्ट ज़रूर मिलता है। और ये इस्लाम में भी कहा जाता है कि इफ़ देर आर पेट्स अराउंड यू, स्पेशली इफ़ देर आर कैट्स अराउंड यू, दे हेल्प यू टू हील, दे हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन, एन्जाइटी, ऐसी चीज़ें नहीं होती। और ये चीज़ भी होता है कि आपके जो आप में एक नेचुरली, आपने आमतौर पर देखा होगा जिस इंसान को जानवरों से प्यार होता है वो काफ़ी अच्छा इंसान होता है, क्योंकि उन्हें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका दिल बहुत नरम होता है इस चीज़ को लेके। एंड वन मोर थिंग, अगर हम साइंटिफिकली बात करें कि वाई टू लव एनिमल्स एंड टू कीप एनिमल्स अराउंड, वाई इज़ इट गुड थिंग, बिकॉज हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो कि एक हार्मोन है, लव हार्मोन। उसकी वजह से आप अच्छा महसूस करते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न बहुत बार ये कहा जाता है कि जब हमारे आसपास कुछ एनिमल्स होते हैं, हम उन्हें पेट करते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं लाइक अ बेबी, एंड इट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस। अब आप बताइए कि आपके घर पे या आप एनिमल से कितना प्यार करते हैं। मैं वासरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार। और देखिए, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट जरूरी है, एंड दिस ट्रैक फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। मैं वासरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं एनिमल लवर्स के बारे में, एंड सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एक इंसान एनिमल से कनेक्ट क्यों होता है। और ये सिर्फ बायोलॉजी या इमोशंस नहीं है, बल्कि इवोल्यूशन है और एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में, जो हमने पहले भी बात की कि ऑक्सीटोसिन एक लव हार्मोन है जो उनके पास जाने से, उनको पेट करने से, एनिमल्स को पेट करने से एक्चुअली हमारी बॉडी में रिलीज होता है और हम एक इमोशनल कनेक्शन महसूस करते हैं। उसके अलावा ये भी है कि एनिमल्स वाहिद ऐसे क्रीचर्स हैं दुनिया में जो एक्चुअली आपको जज नहीं करते। ह्यूमंस विल जज यू बट एनिमल्स डू नॉट जज यू। देयर इज जीरो जजमेंट, देयर इज एक प्योर वो लॉयल्टी होती है, अफेक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काफी रिलैक्स्ड महसूस करता है। लेकिन कल को मैं बेगानी, मेरी चौखट पे आते हैं आशिक। एंड देयर इज वन मोर फैक्ट, दैट इज इवोल्यूशन, यानी कि एक इवोल्यूशनरी हेरिडिटिकल एक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि अगर कोई इंसान के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स दे आर कनेक्टेड टू एनिमल्स, तो वो जेनेटिक ट्रेट भी आगे बढ़ सकता है। मैं मस्रा सुन रही हूं रेडियो सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और आप भी बताइए कि आपको एनिमल लवर्स के बारे में क्या फैक्ट्स पता है। मैं मस्रा सुन रही हूं रेडियो सुना, मैं बस यूं गई और यूं वापस आई।

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: Mixing in the house.

बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 एफएम। मैं हूँ असरा और आप सुन रहे थे रेडियो चुनार। बराबर अभी 4 बजने को हैं और शो हंगामा का अंत पहुंच चुका है। बट देखिए, मैं बिल्कुल सैड नहीं हूँ, क्योंकि संडे सबको अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। संडे इज अ फन डे, एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाइए। इट्स वेरी नेसेसरी टू रिचार्ज योर सोल। पर इस चीज का वादा जरूर है कि मंडे बराबर एग्जैक्ट 2 बजे आऊंगी मैं, 2 से 4 एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, ड्रामा एंड व्हाट नॉट। मैं हूं आसरा, आज के लिए बस इतना ही। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-404-1807178 1-800-180-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

Chinar Beats ve Darce Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: चली चली चली लेट हो गए, ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट्स।
0: ओके तुम्हारी मैं जाऊं। लगता है रूम में रह गए।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुला

0: आवा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।
1: कोक स्टूडियो भारत। सब्सक्राइब नाउ।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: दिल को
5: करार आ जाए
4: जब भी आए
5: सुहानी शाम,
4: दबी यादें महक जाए
5: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
5: सुनिए सुहानी शाम
4: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
5: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: पानी, पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
3: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

शांति, तुमने तुमने सही किया, अपनी खुशी चुन ली, और ये मत सोचना कि मेरा दिल टूट गया ना। मैं खुश हूं, मैं खुश क्योंकि क्योंकि तुम खुश हो। लेकिन वो मेरा साहब से जरूर कह देना कि इस बार मैंने उन्हें छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारी खातिर, सारी रात नहीं, किसी जन्म में उनका मुझसे फिर पाला पड़ गया ना। तो आप मुनियादार मुनियादार या नाराज कला माइंडे बहुत तो नहीं हो रही है।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं।
2: अरेस्ट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द ड्रग क्राइसिस दैट हैज बीन प्लेगिंग फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स।
0: जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं ताकि वो हमारी

0: सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम।
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग।
3: मैं हूँ आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो
1: पानी, पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
4: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
5: दिल को
6: करार आ जाए
5: जब भी आए
6: सुहानी शाम,
5: तभी यादें महक जाए
6: जब भी आए
5: सुहानी शाम।
6: सुनिए सुहानी शाम
5: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
6: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल।

0: 채.
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: マネーカ
1: ー。वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

जिगर, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: Ha? अच्छा कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना ब...

0: और बचाओ ओ मुर्गे ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: ये तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना तारा रा रा रा। जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। हे याने याने याने प्यार हो गया।

हमके वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

ने खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया बाजू।

0: ना यूं ही साथी
1: है बंधी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।